करने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सो। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। ये लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुन वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03265 65 66 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 66 11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या कंप्यूटर के जरिए आप सुन सकते हैं। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सीव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से वेलकम। मंगलवार का दिन है, सभी को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है एक बार फिर से, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0832266611। चले अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, एक भजन होगा लता मंगेशकर की आवाज में, जरूर सुनते ही रहना। एक सुंदर सा राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में सुंदर सा राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश होगा एक सुंदर भजन अनूप जलोटा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में आपको हम ले चलते हैं बाबला जी की ओर और एक सुंदर भजन जो बाबला जी के आवास में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

बाबला जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा भी थे। आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं हरिओम शरण जी की ओर।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, चले यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की ओर, और पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन।

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आज मंगलवार की सुबह की प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। तो जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर श्री हनुमान चालीसा बस पेश किया जा रहा है उदित नारायण की आवाज में।

इसमें इसके जरिए अति सुंदर और सुंदर श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई और रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ आज का भजन यात्रा का प्रोग्राम भी खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए भी, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

फतेह अली खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में कुमार सानू और साधना सरगम की ओर हम

0: खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल के साथ बेला सेंडे और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। पहली फिल्म का नाम है
1: जब चलू तो छन छन छन की अंगनारे, जब चलू तो

और रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आसराव बीट है। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की सर ये आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। चलिए गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक खूबसूरत सा गाना होगा जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में अरिजीत सिंह के आवाज में पेश किया जा रहा है।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अभी अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अभिजीत और कविता।

अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में श्रिया और सोनू निगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना रेडियो SBS के जरिए, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। अब आपको ले चलते हैं सबसे पहले गर्मा गर्म कॉफी चाय की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। मैंने सोचा गर्मी सा मौसम है तो आप सभी के लिए कुछ ठंडी

डोली चलते हैं प्रोग्राम में पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए।

कुकीज की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश जी की आवाज में एक और खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मुकेश के बाद मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप हर एक सुनने वालों को खबर किया जा रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं अपना हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। पद्मश्री मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

नाम मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी और लता की आवाज में एक और काफी खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म का

भी आवास में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। कुछ खूबसूरत नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

का ये प्रोग्राम में खास तौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। मुकेश और लता मंगेशकर प्रोग्राम में होगा आपकी बार खास गाना जो फिल्म जुआरी से बस पेश किया जा रहा है।

कुकीस और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे आपकी बार किशोर एन लता जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है एड फिल्म आ गले लग जा, फिल्म का नाम है आ गले लग जा। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर प्रोग्राम में

रेडियो वेव्स में इसकी सर ये किशोर एन लता जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना बस सबकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिर से होगा किशोर एन लता मंगेशकर और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम आराधना। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, एक रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम जो सालों से पेश किया जा रहा है और सालों से हजारों हजारों सुनने वालों बस रोजाना रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, जो हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से बस सालों से पेश किया जा रहा है और वो भी

बतवारा ये गाना पेश किया गया शब हुसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना, इंडिया भारत देश नोएडा से खास तौर पर ये गाना आज के प्रोग्राम में अरुणेश ने मांग किया जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो मीठे की गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS की सर ये जो पेश की गई 10:12 वैठित हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। लिम्बर्ग से देखा जाए एरेना ने तार किया है और एरेना ये गाना बस सुनना चाहते हैं। तलत महमूद और लता जी की आवाज में गाना का बोल है मोहब्बत की कहानियां।

The man with the golden voice, tell it, Mahmoud. Aur khas to par Lata ji ki awaaz mein ye gana pesh ki gaye. Wo din yaad karo, film ka naam Mohabbat ki kahaniyan. Limburg se khas to par Irene, Irene ye gana maang kiya aap sabhi aur sabhi sunne walon ke liye jo aaj ki program mein pesh ki gaye hai. Irene, आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना. मंगलवार का दिन 23 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है. सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं. सुनने वालों, जिस तरह से आप सभी सुनने वालों को खबर किया गया है कि इस साल मिलन सुमर फेस्टिवल, द ईयर्स एंड द ग्रोथ्स मिलन सुमर फेस्टिवल जो हर साल साइड पार्क डेनहाग शहर में होते हैं, इस साल 21, 22 एंड 23 augustus होने वाले है, यानी कि 21, 22 और 23 तारीख अगस्त साइड पार्क डेनहाग शहर के अंदर में स्पेशल हर एक को खबर किया जा रहा है कि ये क्राम फरहूर के लिए अगर आप एक स्टैंड भाड़ा पर लेना चाहेंगे तो जल्द से जल्द आप कॉन्टेक्ट कीजिए, इसलिए कि ये कुछ स्टैंड बाकी रह गया है जो आपको भाड़ा पर किराए पर दिया जा रहा है. इसके बारे में आप जरूर जाइए वेबसाइट milansummerfestival.nl milansummerfestival.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना टिकट भी आप खरीद सकते हैं. लेकिन आपको खबर किया जा रहा है क्राम फरहूर के लिए खास तौर पर बद्रैफन को खबर किया जा रहा है. जब भी आप अपना सामान यहां पर बेचना चाहेंगे या तो प्रमोट करना चाहेंगे तो जरूर क्राम फरहूर के लिए milansummerfestival.nl वेबसाइट पर आप जाइए और उसी वेबसाइट पर तरह तरह की इन्फो भी आपको दिया जा रहा है. खासतौर पर अपना टिकट के लिए भी इसी वेबसाइट पर आप जाइए milansummerfestival.nl. दिस ईयर 21, 22 एंड 23 अगस्त इन सुइडेनपार्क डेन हाग, द ईयरस्ट एंड द ग्रोथ्स्ट मिलन हॉलैंडिस के अंदर में. चलिए प्रोग्राम में आपके बाद सलमा आगा की ओर हम आपको ले चलते हैं और रोटरडम शहर की रहने वाली अभी अभी स्टूडियो की ओर भी तार किया शीला. शीला हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और एक खास गाना मांग किया है सलमा आगा की आवाज में.

खूबसूरत गाना सलमा अगा की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो बीते शीला अपने मांगी हुई गाना अपनी सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 3:04 हालवेलव स्टूडियो टाइट हो चुका है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम है। एक्ट वेर फोरन लेकर स्काफेस। हाँ, मौसम जो है स्काफेस का मौसम है। तो चले इस मौसम में गाना पेश किया जा रहा है द माइटी मुकेश की आवाज में। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर ये गाना सुनना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में। तो चले मिलकर सुनते हैं माइटी मुकेश की आवाज में फिल्म का नाम मधुमती।

सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। मधुमती फिल्म का गीत पेश की गई माइटी मुकेश की आवाज में। गाना भी आपने सुना, उत्तर शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर। ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना,

मोहम्मद रफी की आवाज में और नौशाद देनहाग शहर के अंदर में भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और नौशाद मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं।

फिल्म का गीत बसपुर गांबे पे इसके गए विश्वजीत का खास फिल्म नाइट इन लंदन मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। और देनहाग शहर का रहने वाला नौशाद ये गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। आपके टार के लिए शुक्रिया। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है देनहाग शहर के अंदर में जरूर सुनते ही रहना। एंटोफे शहर के अंदर में हैंक महावीर भी प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और एक गाना माइटी मुकेश की आवाज में मांग किया है, फिल्म का नाम आग। और गाना पेश कर रहे हैं खुद अपने लिए और अपना पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत बस पेश कर रहे हैं एंटोफे शहर का।

0: पुरानी फिल्म आग उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई द माइटी मुकेश की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना, छोटी सी ये जिंदगानी। एंटोवर शहर का रहने वाला हैंक महावीर ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, खुद अपने लिए और अपना पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए। ये खूबसूरत सा पुरानी फिल्म का गीत आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा, पेश की गई है। हैंक महावीर आपके ऐप के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 12 मिनट वेटेड हो चुका है सुबह सर है 10:00। से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आपकी फरमाइश हुआ, तमाम खबरें तमाम रिक्लाम हुआ सस्ती दामों में इस रेडियो स्टेशन के जरिए बस पेश किया जा रहा है। रोजाना हजारों सुनने वालों बस रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को बस सुनते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश होगा, फिल्म का नाम दोस्ती। रोटरडम शहर का रहने वाला प्रदीप भी तार किया है स्टूडियो की ओर और ये गाना बस आज की सुबह की प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं।
1: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई

और रेडियो एसबीएस के जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई दोस्ती फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और खास तौर पर गाना को मांग करने वाला था रोटरडम शहर का रहने वाला प्रदीप। प्रदीप ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद और शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो एसबीएस का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। अब की बार एक पुरानी फिल्म का गीत जो पेश होगा और वो भी किशोर कुमार की आवाज में। और देखा जाए स्टूडियो की ओर तार किया है दनहाक शहर से विनोद। विनोद ने तार किया है और विनोद इस वक्त नौकरी पर है, काम कर रहे हैं जोर तोर से। और आज के प्रोग्राम में काफी पुरानी फिल्म का गीत मांग किया है। फिल्म का नाम भीगी पलके, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना किशोर कुमार की आवाज में।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस पे इसकी गई भीगी पलके फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और खास तौर पर डेनहाग शहर का रहने वाला विनोद ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में जो पेश की गए हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती मखदा नुंदा अब की बार खास गाना मांग किया है निखिल के लिए, तो चले लता जी की आवाज में सुनते हैं।
1: राम करे बबुआ हो,

किशोर कुमार के आवाज में ये गाना पेश की गई और खासतौर पर उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती महदा नुंदा के तरफ से निखिल के लिए ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों, दो मिनट बाकी है 11 बजे में, एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा और आखिरी पुरानी फिल्मी गीत पेश होगा, पुरानी फिल्मी संगीत होगा प्रोग्राम में। और खासतौर पर मॉरिशियस से दुष्यंत जिंगरे खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है सुमन कल्याणपुर की आवाज में, नूर महल फिल्म का नाम, 1965 का फिल्म। मॉरिशियस का रहने वाला दुष्यंत जिंगरे ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है आप सभी सुनने वालों के लिए।

देखिए आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में अगली बार बैनी दयाल एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

Benny Dayal en Shreya जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में आशकिंग और साथियों की आवाज में। गाना का बोल है बारिश।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 2362-66611। पापोन प्रोग्राम में और पापोन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हमारी अधूरी कहानी ये फिल्म का नाम पापोन की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सभी सुनने वालों को वेलकम और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू एनाल का प्रोग्राम में होगा।

आसान हुआ और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। कुमार सानू एनालका।

इसमें ये फिल्म एक रिश्ता उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ खूबसूरत नखमे बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हेमा सर देसाई एंड शंकर महादेवन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

और शंकर महादेवन की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। सुन वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। इसी डार के नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं 24 पर दाग, यानी कि 24 घंटा लगातार ये डार की नंबर आप सभी के लिए बस होता है। या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए radio.sbs.nl। अपना मोबाइल टेलीफोन की जरिए भी आप ईमेल कर सकते हैं, जरूर आप जाइए radio.sbs.nl वेबसाइट पर। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हरिहरन एंड चित्रा की आवाज में एक गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

इसी तरह से अभी आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू जी के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है, फिल्म का नाम दिल है तुम्हारा। चलिए अब की बार फिल्म धड़कन की ओर एक बार फिर से होगा, उदित नारायण अलका याग्निक एंड कुमार सानू प्रोग्राम में।

film Dhadkan. उदित नारायण और अलका साथ ही साथ कुमार सानू जे की आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई. फिल्म का नाम धड़कन, उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना. रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना. स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611.

की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में प्रेम अगन फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई।

0: Game Film Kadam. रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Why should I stop being for Ladi and lose my Azadi? In short, first marriage rocks and then it is on the rocks. Conditions are right.

की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी अलका जी की आवाज में। अलका जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म का नाम सोल्जर।

और रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में विजय प्रकाश और गायत्री गंजवाला के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अतीफ असलम।

जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार अलका एंड विनोद राठौड़ की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और हम अबकी बार आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम गैम्बलर। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 09822666।

खबरों में थे जी। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की। सर ये जो पेश की गई द मूवी गेम

शाम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम गेम। फिल्म गेम के बाद हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम गैंगस्टर।

करोड़ों का पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में कुमार सानू एंड अनुराधा पोटवल के आवास में एक गाना पेश किया जा रहा है। कुमार सानू और अनुराधा पोटवल

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए कुमार सानू और अनुराधा पोर्टवेल की आवाज में अभी आपने सुना। अरिजीत सिंह और पलक की आवाज में एक गाना आज की प्रोग्राम में भी

रेडियो SBS का प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए, वो भी रेडियो SBS.NL वेबसाइट की जरिए। चलिए प्रोग्राम में विजय प्रकाश एंड शरिया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी अब की बार प्रोग्राम में होगा और आपको हम ले चलते हैं एक और बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS के जरिए पुरानी नगमे बस पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। मन्ना डे और लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं, मस्ती भरा है शबाब।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई मन्ना डे और लता जी की आवाज में की मस्ती भरा है शबान। मन्ना डे और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। चले आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

मौसम है आशिकाना, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था पकीसा, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहेंगे तो अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन पर जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl और उसी वेबसाइट की जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं स्टूडियो की ओर। किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा।

रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है और पुरानी नगमे आप जरूर सुनते ही रहना। मुकेश और लता मंगेशकर प्रोग्राम में एक मंजिल राही दो फिर प्यार मिले।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर।

भी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में गाना बसपुर में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। खूबसूरत पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश होगा किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में और फिल्म का नाम

किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था अधिकार। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में मुकेश एंड लता प्रोग्राम में। मुकेश और लता जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम है संगम।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आशा जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए द नाइटिंगेल ऑफ एशिया, आशा जी की आवाज में अभी आपने सुना ये खास गाना। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश होगा मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

रेडियो SBS की सरिया मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। एक गाना मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352565566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

तू जहां भी जाएगी तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। आई लव यू माई एंजल वॉज द फिल्म प्यारे मोहन एंड इस गज़ंग दूर कुनाल गांजावाला। Het volgende liedje via Radio SBS in het programma Gieton Kelleher is gezongen door Arijit Singh. Uit de film Holiday komt Aaj Dil Shayarana Lagta Hai.

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jibin Nautiyal en Preetam komt het volgende liedje via Radio SBS in het programma Geeton ke Leher. Uit de film Tadap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से आपने सुना टाइटल सॉन्ग अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में, और अब हम सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मुंबई दिल्ली की कुड़िया।

चली आई चली आई इज द फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ गजान दूर चित्राएं के एंड द फिल्म काटे कोम इश्क समंदर.

माता, मैं आज्ञा चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है, सोने दो, दिल कह रहा है कुछ होने दो।

निगम अलका याचिक और कोरस की आवाज में आपने सुना ताल पे जब ये जिंदगानी चले फिल्म रेफ्यूजी से। ये पहला फिल्म था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, फिल्म हेलमेट से। गोल्ड बॉय और शिप्रा गोयल की आवाज में आप सुनिए बर्बाद।

रहना है तेरे दिल में, बस द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड द फिल्म काबिल कौमत काबिल हूँ मैं, खुशो दो जुबेर नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और अब आप सुनिए एक पहेली लीला से तुलसी कुमार की आवाज में मेरे सैया सुपरस्टार।

दिलबर मेरे कब तक मुझे यूं ऐसे ही तड़पाओगे, वास आउट द फिल्म सत्य पे सत्ता फान अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी। हाँ तो फिर मैं आउट द फिल्म लव यात्री इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS इस गजों दुर आतिफ असलम तेरा हुआ।

Hi, क्या थे वो दिन? बस द फिल्म छिछोरे, द फिल्म फन सुशांत सिंह राजपूत सामा में श्रद्धा कपूर, दिल्ली दिस गजोंदोर तुषार जोशी. गजोंदोर अलका याचिनी कम तुत फोहत लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर. द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे कौन क्या हुआ तुझे.

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।